ने आकाशे ये बाला रामन से बोले से जोरो से है ऐसे से कल्पवा माता ये मयाने ये